पता नहीं सी, बिल्कुल भी कोई पता नहीं सी। बघेल सिंह ने उत्थे पता किया सारी गलबात का, फिर के अचानक एक बुजुर्ग माता उत्थों दी लंघी। उन्हें बुजुर्ग माता दे कोल खलो के एक बचन पूछ रहा सी लोगों नूं, ते उन्हें पूछिया ते उन्हें बुजुर्ग माता ने बचन आखे कहन लगी, हां पुत वे गुरु तेग बहादुर साहब की जिथे शहादत हुई सी ओ तैनू मैं दस सकनी है, उन्हें दसिया। उन्हें नाल एक गल कही भी जदों गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई सी उदों मैं बहुत निकली सा, मेरे बुजुर्ग उस थां दे उत्ते डुले हुए खून नूं साफ करन आए सन पानी डोल के। मेरे बुजुर्ग आए सन, मैं उन्हां दे नाल आई सां, बहुत छोटी सां। याद रखने योग बात है 11 नवंबर 1675 नूं गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई है। ते आ जिहड़ी कहानी है यह 1783 की दस तुहाडे नाल सांझी करदे आ। उदों बुजुर्गां की उम्र 100 साल दे नेड़े हुंदी सी, ते उन्हें बचन आख्या कहन लगे, मैं बिल्कुल छोटी जी सां पर इत्थे मैनू नहीं पता शहादत किवें होई, मैनू बाकी गल्लां दा नहीं पता, पर मेरे बुजुर्गां ने इत्थे खून डुल्लिया धोता सी, मैनू चौड़ा जिहा याद है भई कदे जिहड़ा खून डुल्लिया धोता सी मैं उहदे नाल सां। बघेल सिंह ने माता दे चरणी हत्थ लाए, मां तू बड़ा परोपकार कीता, फिर उस स्थान नूं बनाया। बघेल सिंह ने ही शीशगंज साहब नूं बनाया, बघेल सिंह ने ही माता सुंदर कौर ते माता दातार पातशाह जी दे, माता साहब कौर जी जिन्हों अज आपां आप सत्कार नाल कहने, माता साहब कौर जी ते माता सुंदर कौर जी उन्हां दे पावन स्थान बनाए, गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे ज्योति जोत समाउण दा स्थान बनाया। इतिहादिक जिहड़े स्थान जिन्ने भी ने उह बघेल सिंह दे उद्दम दे सरका बने हुए ने। 1783 विच सिख जगत का चमकदा सितारा, बदकिस्मत दिन वह जिस दिन जस्सा सिंह अधूवारिया चढ़ाई कर गया, इहदे शरीर ते एक भी अजिहा अंग नहीं सी जिहदे उत्ते सिख कौम की खातर इन्हे जख्म न खादा होया होवे। याद के सारा कुछ वरते हूं आप उ चलीए जिथे विचार दस थोड़े ने साझी कर रहा, क्योंकि बिचों लड़ी रह जानी सी। महाराजा रणजीत सिंह 1799 5 जुलाई में एक मीटिंग कर दे, उस तो बाद पतवंत सज्जन उन्हू आग्या देंदे ने भी तू आमी ते असी दरवाजे खोलांगे। 7 जुलाई 1799 महाराजा रणजीत सिंह जांदा लाहौर के दरवाजे उन्हू खोल देंदे ने, क्योंकि उन्होंने गुज्जर सिंह ते हरि सिंह भंगी इन्हां दे प्रबंध नू देखिया होया असी लाहौर वालिया ने। जदों इस तरह का भाणा वरतिया, महाराजा रणजीत सिंह गया तो उस वेले का चेत सिंह जिहड़ा मुखी है उन्हें छोटा जिहा जंग किया, पर उस जंग विच हार गया। महाराजा रणजीत सिंह दा हथ उत्ते रहा, क्योंकि दे नाल सदा कौर भी सी, दो फौजां सन, इहदा हथ उत्ते रहा। खैर उन्हें एक जगीर दे के चेत सिंह नूं उत्थों विदा कर दिता ते आप उत्थों दा मुखिया बन के बैठ गया। उदों महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 विच कब्जा किया ते कुछ एक इलाके ने होर जिते। जदों होर इलाके जित ले ते 1801 विच 11 अप्रैल 1801 विच इन्हें एक दरबार लाया, जिस दरबार दे विच इन्हें अपने आप नूं महाराजा घोषित कीता, ऐलान कीता, ते नाल ही साहिब सिंह बेदी ने इन्हें मत्थे ते तिलक लाया राजा होण दा। 1801 नूं इह राजा बणिया। इस तों अगली लड़ी कदे फिर वक्त मिलिया तुहाडे नाल फिर सांझी करनी है। ओ हुण मैं छोटी जी पिछोकड़ की गल तुहाडे नाल होर सांझी करनी चाहुंदा। महाराजा रणजीत सिंह दा की पिछोकड़ है? महाराजा रणजीत सिंह 1780 विच जमया। चरत सिंह शुक्र चक्किया बहुत बड़ी जिक्र आ चुका होया है। चरत सिंह दा पुत्तर है महां सिंह, महां सिंह दा पुत्तर है महाराजा रणजीत सिंह। 1780 विच जमया। इहदे जन्म स्थानां बारे विद्वानां दे विच मतभेद है, पर मैं निक्की गल करां भी गुजरां

0: अपनी शरण विच मैनू रख लो रख लो
1: रावर दर्श सुने बच जबे
0: आप जी दे दर्शन जदों कीते जदों बचन सोने सुने
1: पूरब सिमरत भी अब सबे
0: ओ जेड़ियां पिछलियां सारियां चीजां सी बचन बलास सी अपने ओ तुहाडा रूप ओ मैनू सारा याद आ गया
1: भई शक्त मुझ बिखे विशाल
0: मेरे विच बड़ी भारी शक्ति हो गई है
1: रखो पीर जी ले ओ संभाल
0: पीर जी हुण तां तुसी रख लो तुसी संभालो मैनू
1: जितक प्रथम की बात उबाचे
0: जिन्ना का आप जी ने पहले जेड़े बचन कहे सन
1: सब जानी मैं बीती सो साचे
0: मैनू याद आ गया के सारियां गल्लां बिल्कुल सच्चियां मेरे नाल बीतियां हन
1: दे तीरज तब प्रभ ठेग राखा
0: उस वक्त महाराज जी ने इनू तीरज दिता थापड़ा दिता अते अपने कोल ही रख लिया नाल ही
1: जिस को नित दर्शन अबलाखा
0: जिनू हर रोज सैदा बेग नू एक दर्शना दी अबलाखा ही सी होर कोई इच्छा नहीं सी
1: मुगल प्रमोद कलो और पायो
0: मुगल ने भाव सैदा बेग ने मन दे अंदर बहुत खुशी महसूस कीती
1: जीतक डेरा सकल लुटायो
0: जिन्ना क डेरा सी पैसा धन दौलत पदार्थ ओ सारा ही लुटा दिता अपनियां फौजां नूं ही दे दिता
1: सब किछ त्याग रहे प्रभ पास
0: सारा कुछ छड़ दिता कहण लग्या भई मैनू अपनी मंजिल मिल गई है इस करके मैं हूं गुरां दे कोल ही रहांगा
1: वे परलोक सुख लागी आसा
0: हुण मैनूं इह आसा लागी मन च कि मैनूं हुण गुरां दे कोल आके कोई फिक्र नहीं है इस लोक दा सुख भी मिलेगा परलोक दा सुख मिलेगा
1: सगल तुरक गए जब दूर उतरे डेरे बिखे हजूर
0: जदों सारे तुरक चले गए बहुत दूर लंघ गईयां फौजां उन्हां दीयां तां महाराज सच्चे पातशाह ने जिथे अपना डेरा कीता होया सी उथे जा के उतरे
1: खान पान दाना तिन पाए बसे निसा पूरब की थाए
0: घोड़ियां नूं भी खाना दाना पाया है और फौजां ने भी लंगर छकिया है अते रात नूं विराजमान होए
1: भई प्रभात कूच कर देन
0: अमृत वेला नितनेम करके उस तो बाद सूरज दे चढ़ाओ नाल

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: करके इस तरह बैठ गए, ढिले पै गए। हौली हौली दस पिंड भी पिंड करद्या मेरा राज खोणगे, फिर थोड़ा खोणगे, फिर साडे सारयां दे राज खोणगे। इस करके आपां नूं ढिले नहीं पैना चाहीदा।
1: नित प्रत दल सिंगन को आवै, लूट कूट कर मिट हट जावै।
0: हुण नेता प्रति सिंघां दे दल आउंदे ने साडे इलाके दे विच, लुट के फिर वापस मुड़ जांदे ने।
1: वाजत रहे बंदूक सदाई, मरे कि मारे फते बुलाई।
0: गोलियां दी आवाज आउंदी रहिंदी आ, कदे किते गोली चल गई, कदे किते मारते, कदे किते मारते। इस तरह ये हमेशा ऐसा कर्म करते हैं।
1: शाह पुकार सुनी इक सारी, लड़ियो आन लश्कर तब पारे।
0: हां एक बारी बादशाह ने साडी पुकार जरूर सुनी है, भारी फौजां भेजियां हन उसने एक बार।
1: अब कह जाए कहां कह शाहू, निर्बल अदक लखै मन माऊ।
0: इस करके हुण जे आपां हुण जाके कहिंदे आ उत्थे बादशाह नूं, फिर वह जानेगा कि बहुत ज्यादा राजे जिहड़े ने निर्बल हो चुके हन।
1: बार बार की सुने पुकार, कै खिज परे करे बुरे यार।
0: बार बार जदों आपां इस तरह पुकार करांगे उन्हां दे कोले, बादशाह खिजेगा अपने ते, ते साडे नाल माड़ा कर्म करेगा भी तुसीं इन्ना भी नहीं कर सकते। एक जाना हैगा, उन्हां पांच चार हजार जाने हैगे आ, थोड़े कोल इन्नियां लखां फौजां ने, तुसीं कख नहीं कर सकते। आ झिड़कां पावेगा।
1: एक सौ जे गुर के सिख मरे, आए हजारों के सुन धरे।
0: जे महाराज का सौ सिंह शहीद हुंदा है, उहदी जगह ते हजारां दी गिनती च होर केस धारण करदे ने, भाव अमर छक लैंदे ने, ककार पहन लैंदे ने। इस तरह साडा उत्थे की मुकाबला है।
1: ने निपटे ने पाए पराजय।
0: सो इस करके ना निपटिए ते ना हारिए।
1: आन लाभ को लखै न काजै।
0: ओ नहीं जानदे कि हान की है, लाभ की है। ओ ना साडे नाल निपटदे मुकदे ने, ना हारदे ने, ना ये समझदे ने कि हां लाभ की चीज है।
1: सुनो ग्रीशो करो उपाय।
0: सुनो ग्रीशो तो भाव पहाड़ी राजे हो, आपां हुण मिलके कोई यतन करिए।
1: बिगड़त कारज समदाए।
0: इस तरह तो अपना सारिआं दा काम जिहड़ा है वो बिगड़ जाएगा।
1: सुनत घुमंड चंद तब पाखा, को उपाय तुमने अब लाखा।
0: हां घुमंड चंद राजा कहण लग्या, चलो ये भी ठीक है कि तुसी सानू कहंदे हो, तुसी की सोचिया है, थोड़ा की इरादा है, आपां नूं की करना चाहिदा है।
1: बिना लड़न ते अपर ना कौ, मिले ना बचो छीन ले सो।
0: सो बिना लड़न तो होर तां कोई रस्ता नहीं है। इस करके उह सारा कुछ अपने तो खो लैणगे, ना कोई मिलना ना बचना।
1: प्रथम शाह टिग बने न जाना, सेना संच काल कमसाना।
0: पहला बादशाह कोल अपना जाना बनता नहीं है, पहला तो आपां फौजां कठियां करिए, फिर घमसाण दा जंग करिए।
1: लड़बे कहो निप तरै जे आलस, राज करन की तरै न लालस।
0: सो इस करके जे राजां नूं कहने आ आलस बड़ी करदे ने, इस करके तुसीं राज दी जिहड़ी हुण आलस है ना, ये ढिल मठ है, इहदा तुहानूं त्याग करना चाहीदा है।
1: रिप बस होए न दंड बहीना, वदै प्रताप सदंड अधीना।
0: क्योंकि दुश्मन कदे भी दंड तो बिना अधीन नहीं हुंदा, दंड देना चाहीदा है। अते जिहड़ी प्रजा है ना, ये प्रजा दी एक गल हैगी आ,

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्था दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। या गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा।

के फिर खंडे बाटे का अमर छकण तो कई परिवार अपनिया मजबूरिया दसन लगे, जिमें हरगोपाल बिशंबर दास ने दसी मजबूरी, महाराज साडा तो सारा खानदान ही फिर इस तरह का है। सतगुरु ने कहा यह ठीक है कि हुण तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लड़ लगे हो, इस तरीके नाल पाहुल लैणी जिमें दस्या सी कि गुरु ग्रंथ साहिब दे की कंग ते वस्त्र फेर के जल छकना, पर यह बचन कहा सी कि भाई हौली हौली अमृत छक लियो फिर खंडे बाटे का। यह भी कहा सी जे रिश्तेदारियां भी छड़नियां पैण कोई गल नहीं, फिर असी है गई हैं सिर ते थोड़े। इथों तक सतगुरु ने करड़ा सब नूं कर दिता कि रिश्तेदारियां भी छड़ दो। उहदे विच हुण जिहड़े तां है गुरसिख परिवार, वह तो सारे ने बहुतियां ने खंडे बाटे का अमर छकिया, एक उन्हां दे विच हुण ऐसे भी लोग जो गुरु घर नाल प्रीति करन लगे प्रेम करन लगे, सो उन्हां विच कई प्रकार दे ब्राह्मण भी आए जिन्हां ने दाढ़ी केस अपने साबत रखे मर्यादा भी रखी, पर अमृत छकण तो अपनी असमर्था जनाई। ऐसे ऐसे जदों सारे मसले भी सामने आउंदे ने सतगुरां दे तां उन्हां दा हल भी करदे ने, फिर उन्हां नूं समझाउंदे ने की नहीं खाणा। हौली हौली भाई तुसीं अमृत छक लिओ, इह जरूर कहिंदे ने सारिआं नूं, पर अपने वास्ते नहीं है। आपां तां सिद्धा हुक्म है कि अमृत छको भाई खंडे बाटे दा। इस तरह के कई चीजा साडे सामने भी आउणगीआं, आओ श्रवण करदे आं, रसना नूं करिए पवित्र, प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु।

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्यागे, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मानदे ही नहीं, गुरु घर नूं नहीं मानदे ऐवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारिआं नाल ही वरतणा, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब

0: सुपते निसमय सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लै के आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी क है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने या नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने। उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गद के आ

0: काम मैं करना ते कुल दे जिहड़े काम ने अपने घर दे कारोबार ने गृहस्थियां ने करने ने नाम जपना है।
1: पाप बिगाड़ै सिख मन साखी सुने उपकार।
0: मेरा सिख होके जिहड़ा पापां नूं परे कर दवे, पाप कर्म ना करे, साखी सुने साखी सुनावे, ये दो काम करे, उपकार दा काम करे, किसी नूं साखी सुना के सीधे राह लाओ, आप साखी सुनो।
1: खंडे की पाहल जिनू सो शस्त्र को धार।
0: जिन्हां ने खंडे बाटे दा अमर छकिया होया है वह शस्त्र जरूर पहनना, अपना ककार तरपान कंघा कड़ा कशहरा केस जरूर अपने ध्यान ना रखो। यह ना होवे कि अमर छकिया होया ते कृपान का पता ही नहीं कित्थे है। शस्त्रां नूं जरूर ग्रहण करके रखना।
1: करे जीव का अपनी प्रारब्ध दे अनुसार।
0: प्रारब्ध अनुसार आप अपनी जीव का करे, नाम जपे ते अमर छके मर्यादा विच चले। सारियां चीजां आपां नूं महाराज ने समझाईयां ने, तो इस करके समझाउण विच कोई हर्जा नहीं हुंदा। जे आपां वैसे कहे बह के माड़ियां गल्लां करिए उह गल्लां माड़ियां हुंदियां ने, पर जदों आपां नूं सतगुरु जी समझाउंदे होण भाई माड़ा काम नहीं करना, निज नारी के साथ नेहो तुम नित बढ़ाई हो, पर नारी की सेज भूल सुपने हो ना जई हो, इन्हां गल्लां नूं जदों सतगुरु समझाउंदे इन्हां माड़ियां गल्लां नहीं ना है। इस करके महाराज किसी माड़ी भावना नाल नहीं कर रहे हो वचन नूं। सतगुरु ने जिन्ना कुछ लिखिया वह अपने भले वास्ते लिखिया, हर गल विच ज्ञान है। हां यह गल जरूर है भी जिहड़े बंदे दे अपने जीवन डिगे हुए ने वह गलत अंदाजा जरूर लाउंदे हरेक गल च। जिन्हां बंदिआं दे अपने जीवन डिगे हुए ने वह हमेशा कहणगे आ पता नहीं इधर नूं क्यों जांदे लोग, पता नहीं माड़ा काम ही करन जांदे ने कोई। सो जिहड़े बंदे सारा दिन खाण च ध्यान है जिन्हां दा, जे आपां गुरद्वारे नूं आवांगे कहिंदे चलिआ कड़ाह खाण, क्यों उहदा ध्यान ही खाण च है। जे कोई भजन पाठ वाला बंदा बैठा किते वह संगत जांदी देखूगा वह आखूगा लै भी ये तो भला बंदा है गुरुद्वारे चलिया भजन सिमन करेगा जाके, उहदी अपनी बिरती है। जे कोई चोर बैठा राह च वह कहिंदा सारे चोर ही जांदे ने पता नहीं की चक के लिआउंदे उत्थों। यह हरेक बंदे की आपो अपनी बिरती है, अपनी बिरती के मुताबिक कुछ ना कुछ बोलता ही रहिंदा। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने तुसीं सारिआं ने जिन्ना भी मैं धर्म का प्रचार तुहानूं दस्सिआ वह सारा प्रचार कमाउणा है। गुरां ने तो बहुत सोझी दित्ती खालसे नूं बहुत ज्यादा, पर खालसा जिहड़ा ना इन थोड़ा थोड़ा रिएक्शन भी हो जाता कदे कदे, जिवें न्याणा दुध पी के बाहर ही कढ दिंदा फिर यह किंतु परंतु भी करन लग जांदा। सो इस करके थोड़ा ध्यान रखना चाहीदा। सतगुरु ने कोई गल गलत नहीं लिखी, समझाउण वास्ते कोई भी चीज जिहड़ी आ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
1: ਰਲ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮ ਕੋ ਪੀਠ ਨਰਿਪ ਕੋ ਦੇ।
0: ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜੇ।
1: ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਤੈ ਸੁਰਪੁਰ ਕੈ ਜਸ ਲੇ।
0: ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਤਜ ਧੀਰਜ ਰਣ ਤੇ ਭਜੈ ਜਗ ਮੈਲੇ ਅਪਵਾਦ।
0: ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੱਜਿਆ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
1: ਮਰੇ ਪਾਪ ਫਲ ਭੋਗਿਆ ਪਾਏ ਨ ਕਿਸ ਅਹਿਲਾਦ।
0: ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
1: ਜਾਤ ਬਰਣ ਕੀ ਕਾਲ ਤਜ ਮਿਲੇ ਖਾਲਸੇ ਸੰਗ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ।

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे,

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच बैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा कम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर ये दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ दी बाणी जिन्हें भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने ये चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आइयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब 84 लाख जून के मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है, जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

0: सतगुरु कहते कर हर ट माला टिंड प्रो ध्यान दो जी जागदियां रूहां एकाग्रता बख्शियो कहते आ जेडे सुवास इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरू वाहिगुरू गल करो
1: वाहिगुरू
0: खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जेहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे
2: टिंड
0: माल ते जेहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जे सुवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सुवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे इस माल नूं तू आए नूं खिचे कौन कहिंदे इस पीतर मन जोगो सरवण कीता इस पीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं जो कौन किहनूं जो मन नूं विच जोड़ो जोगो दा मतलब जोड़ दिओ जो दिओ आपां कहिंदे बलद जोड़ दित्ते इहदे इस खूह दीआं माला टिंडा खिचण लई मन नूं बलद बणाओ ते मन तां साडा सिमरन करदिआं वी दौड़दा रहिंदा है साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इहनां टिंडां नूं खिच अगे जाके कहते अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत भरो क्यारे बोलो ना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्होंने पता है एक छोटिया छोटिया मटा पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानू पता पिंडां दे रहण वाले खेती बाड़ी करन वाले पता क्यारे पा दी दे साहब कहते ने अंदरों मन नू जो के आज सुवासा की टिंडा की माला ए मन नू जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे तो मैं धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी पूछा महाराज शरीर से कहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री कद के बोलो सतनाम महाराज खेतों में क्यारे होंगे इतने क्यारे कहड़े कहते अखा नाम जपन वाले दमृत ना भर दिंदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बोलने लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी परसन लग पा फिर आखिया महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत भर दी गल कर लगता वा ते कहने फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपन वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपन वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नू जो इस सुवासा की माला बना मगर ए जे बरतना होया जे मन नू तू ना विच जोता सिमरन विच मन नू ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्यों अमृत आना नहीं ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कुछ नहीं मन नू विच जोना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

यात्रा के लिए आंदा एको तीर्थ है सिद्धो बेटो एको तीर्थ है हिंदुस्तान यात्रा के लिए बस एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए जहां बेटे पाप ने तो बड़ा तीर्थ थोड़िया गड्डिया चमकौर नहीं जे मुड़दिया भावे मेरा गुस्सा ही करे सुनो थोड़िया गड्डिया चमकौर साहब नहीं जे मुड़दिया भावे गुस्सा ही करे जे तुसी महीने बाद एक एक परिवार भी ला लो ना के असी महीने बाद चमकौर की धरती से मत्था टेकन जाना ही जाना है उत्थे कबूतरा की जगह से गुरु दे सिखा की संगत जुड़ सकती डेरिया तुर पाए नवे नवे धर्म स्थान आप लभ लें बस एक ही तीर्थ है हिंदमय यात्रा के लिए अल्लाह यार खा कहता कटाए जहां बेटे बाप ने खुदा के लिए कटाए।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विचो चा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नू कह रही हां महाराज मेनू विछड़ी नू मेल लो,

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आ, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आ, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: एवं गुरुपद साध जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करो कृपा सारे आखो आद सच जुगाद
1: सच है भी सच नानक होसी भी सच
0: जुड़ के आखो जी आद सच जुगाद
1: सच है भी सच नानक होसी भी